0: साउथ से केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डिजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca। लव साउथ।
1: नोट करो कि जेकर तुसी अपने घर जा बिजनेस अदारे दे विच प्रोफेशनल पेंटर द्वारा पेंट करवाना चाहुंदे हो तां चेती रखो गिल हाउस पेंटिंग जो तुहाडे घर दे विच पेंट तो पहला हर एक कोना प्रॉपर तरीके नाल कवर करदे हन। वाजब रेट अते समय सिर काम करवाउण लई अते एस्टीमेट बिलकुल फ्री लैण लई कॉल करो कमल गिल 647-833-5960 6478335960 गिल हाउस पेंटिंग। पिछले 20 सालों तो कस्टम वुड वर्किंग दिया प्रोफेशनल सेवावां प्रोवाइड कर रहा नाम मेपल वन किचन एंड बाथ इंक गूगल ते 5 स्टार रेटिंग हासिल कर चुकी वुड वर्किंग कंपनी द्वारा। अगर तुसी अपने घर दी हाई एंड किचन कैबिनेट क्लोजेट बार टीवी यूनिट या डॉक्टर ऑफिस डेंटल ऑफिस ऑप्टिकल स्टोर दी वुड वर्किंग दा काम अपने बजट अते समय सिर करवाना चाहुंदे हो तां चेते रखो मेपल वन किचन एंड बाथ इंक 173 एडवांस बुलेवार जूनट 34 ब्रैम्पटन और 9054580075 9054580075 मेपल वन किचन एंड बाथ इंक। लंबे समय तो कम्युनिटी विच परख्या होया नाम एनी टाइम होम रेनोवेशन सिटी तो बकायदा परमिट लेके तुसी अपने घर दी लीगल बेसमेंट तैयार करोनी है या वाशरूम प्लम्बिंग किसी भी तरह दी रेनोवेशन दे कमा नु समय ते करवाउण लई चेते रखो एनी टाइम होम रेनोवेशन। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 647-271-1735 एनी टाइम होम रेनोवेशन।
2: टोल जगीरो दा ते टाबा जगीर दा इना दोना दे क्या कहने।
3: जगीर दा टाबा इना दे ऑथेंटिक इंडियन क्यूजीन दा है हर कोई दीवारा।
2: बटर चिकन, गोट करी, टिक्का मसाला, चना मसाला, दाल मखनी,
3: मिक्स वेज पकौड़ा, स्पेशल फिश, बिरयानी, बर्गर ते परांठा,
2: डिजर्ट्स, वेज ते नॉन वेज विच ढेर सारी वैरायटी
3: ते नाले जगीर दी स्पेशल चा भी ट्राई करियो।
2: 1 सीडर ग्रोव रोड मोनो ऑरेंज विल दे विच।
3: कॉल 6474003229
2: और विजिट www.jagirdataba.ca।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। नंबर 9057990045 टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: बाबा जी मेरा व्याह नहीं हो रहा, कोई मंत्र तो फूको बच्चे थे।
3: 647-888-6000।
2: बाबा जी आ केड़ा मंत्र है?
3: बच्चा ए नंबर चमत्कारी है, जिन्हें मिलाया ओदी समझो व्याह दी तैयारी है।
2: पक्की गल बाबा जी?
3: बाबे दा घर भी एना ने ही बसाया है, NRI मैरिज ब्यूरो।
4: हर कास्ट अते हर प्रोफाइल दे रिश्ते लई परोसे दा नाम NRI मैरिज ब्यूरो। कॉल 647-888-6000 और विजिट NRIMB.com।
5: सियाने कहंदे ने व्याह दा लड्डू जो खाए ओ पछताए, जो ना खाए ओ भी पछताए,
6: पर एक लड्डू खा के कोई नहीं पछताउंदा, ओ है जी स्वीट महल दा लड्डू,
5: जिस विच है प्यार दी मिठास, कई सालां दा विश्वास, खालस सामग्री नाल तैयार ताजियां मिठाइयां अते खाने।
7: थोड़ा खाओ वधिया खाओ, स्वीट महल नाल जश्न मनाओ।
8: या आज ही पहुंचो 680 रेक्सडेल बुलेवार्ड, यूनिट 9, नियर हाईवे 427, 416-679-9191।
9: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे, मेरी निक्की भैन दा व्याह, मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी।
10: क्यों नहीं चन करे, कहे तो सिर तो पैर तक सोने चमड़ा दें।
9: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल, उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने, सेट रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनिया, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
10: हां नाले मैं सारे दियां बाहां भी तबिंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां ओनू भी ले दांगे।
9: तो मेरे जीजे ली घड़ी?
10: आहो अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां, रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
9: चलो फिर छेती चलो, अशोक ज्वेलर 7198 एयरपोर्ट रोड मालचन इन अशोक प्लाजा, फोन नंबर है 905-671-4290।
11: ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ।
12: ਓ ਜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।
13: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਂਟ, ਟੇਬਲ, ਚੇਅਰ, LED ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ, ਫਲਾਵਰ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ, 360 ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਟੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ।
12: ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ 6477-08-0079।
14: नवरात्रि स्पेशल अनोखा अंदाज दी स्पेशल सेल लगन जा रही है। लेडीज मेंस पार्टी वेयर, ब्राइडल लहंगास, सूट्स, साड़ीज, कुर्तीज, अनस्टिच्ड सूट मटेरियल लेना होवे ते आज ही आओ। सूट्स ते ड्रेसेस कस्टमाइज भी करवा सकते हो। नवरात्रि स्पेशल कागरा चोली जस्ट $50, मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मेंशन CJMR एंड गेट 20% ऑफ ऑन एवरी ड्रेस। अनोखा अंदाज, 6101 मेफील्ड रोड, यूनिट 3, ब्रैम्पटन। कॉल 905-794-4005।
15: ताजियां सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मार, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42A, ब्रैम्पटन। कॉल 905-928-8 5 smart।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: आज छड़

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320
1: कम्युनिकेशंस ग्रुप योर ट्रस्टेड लोकल रेडियो प्रोवाइडर फॉर मोर देन 70 इयर्स।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: तेरा सिस्टम हिल गया, तेरा सिस्टम हिल गया, तेरा तो सिस्टम हिल गया।
1: The voice for your community, the voice of the city, CJMR 1320.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR
1: 1320 I'm human it's LAJ
2: होके पब्बा पार नची बन तलवार नची
1: human It's LAJ.
2: होके पब्बा पार नची बन तलवार नची होके पब्बा पार नची बन तलवार नची बन तलवार नची होके पब्बा पार नची बन तलवार

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: नवंबर 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट, वार्ड 9 और 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
3: रिट्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना सुनो।
4: सस्ता

0: गिफ्ट सेट मिलेगा $40 दा, पैनासोनिक दा माइक्रोवेव $79 दा, ब्रांडेड जैकेट $15 दियां, बच्चों दे टॉय 50% ऑफ, ट्राईसाइकल मिलेगा सिर्फ $40 दा, 7 पीस ग्लास विद विस्की बोतल सेट $20 दा, $150 दी शॉपिंग करो ते इस सेट बिल्कुल फ्री लवो। 31 मेलनी मेलनी ते स्टील ते इंडिया रियान वास्ते वधिया सूटकेस खरीदना चाहुंदे हो ता आओ सीके लिक्विडेशन, नंबर टू कॉल 9054055555। सीके लिक्विडेशन।
1: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।
1: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो मित्रों बेनती है सारे अपनी अपनी थां ते खड़ जाओ, भंगड़ा पाउण नूं तैयार हो जाओ, प्रोग्राम शुरू होण लग्गिया है।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: music, baby.
1: ओ एक दिन बैठा मैं सोचा मैनू होई बड़ी हैरानी, भैड़ी लगदी चीज क्यों अपनी ते चंगी लगे।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

करे ब्लो, बाकी करे शाइन, तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो, वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100, बाकी एवरेज तू है सैवेज, बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। Baby let's go right now, देखो मुझे वेट ना इतने कराओ। लक तेरा लीन, बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: 11 पेंट समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री।
1: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे, मेरी निक्की भैन का व्याह, मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी।
2: क्यों नहीं चन करे, कहे तो सिर तो पैर तक सोने चमड़ा दें।
1: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल, उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने, सेट रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनिया, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
2: हां नाले मैं साड़ी दियां बाहां भी तां बिंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां ओनू भी ले दांगे।
1: तो मेरे जीजे ली घड़ी,
2: आहो अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
1: चलो फिर छेती चलो अशोक ज्वेलर 7198 पेट्रोल माल्टन इन अशोक प्लाजा, फोन नंबर है 9056714290।
3: घर होवे या ऑफिस, ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स, शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट, पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलिडन पेविंग।
4: एक्सेस रैंप्स, एक्सकावेशन, ग्रेडिंग, रीसर्फेसिंग, ओवरले फार्म, ड्राइववे पेविंग, ये सब कर देने। आज ही कॉन्टेक्ट करो जसबल नू, इट्स 416-818-8900
3: और विजिट www.calidonpaving.com।
5: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल, अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन, नंबर 9057990045 9057990045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।
6: जे कलोटी दा पैगाम वड्डे सारिया दे नाल, जेकर ट्रैफिक टिकट, स्मॉल क्लेम, सिटी बायलॉज जां मकान मालक किराएदार दे पौणियां च फस गए हो, तां साडे कई वरिया दे माहर तजुर्बे दा फायदा लवो। जे कलोटी अजिहा ना तुहाडी मुश्किल कर देंदा आसान। ट्रैफिक कोर्ट एडवोकेट्स लाइसेंस बाय द लॉ सोसाइटी ऑफ अपर कैनेडा। जे कलोटी, योर रिकॉर्ड मैटर्स, यू मस्ट टेक एक्स्ट्रा केयर। नाउ न्यू लोकेशन 7920 ह्यूरंटारियो स्ट्रीट, यूनिट 43 इन ब्रैम्पटन, 9057956556, दैट्स 9057905 790-5656. J. Kaloti. Tried, trusted, most effective.

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: सीके लिक्विडेशन ते चल रही है भारी सेल। 50 डॉलर वाला कंबल 100 दे 3 ले सकदे हो। 16 पीस डिनर सेट 70 वाला 35 दा। गुरबानी रेडियो 100 दे 5। कंफर्ट सेट 20 डॉलर दा। परफ्यूम 20 डॉलर दे 3। परफ्यूम गिफ्ट सेट मिलेगा 40 डॉलर दा। पैनासोनिक दा माइक्रोवेव 79 डॉलर दा। ब्रांडेड जैकेट 15 नाल दियां, बच्चों दे टॉय 50% ऑफ। ट्राईसाइकल मिलेगा सिर्फ 40 डॉलर दा। 7 पीस ग्लास विद विस्की बोतल सेट 20 डॉलर दा। 150 डॉलर दी शॉपिंग करो ते इस सेट बिल्कुल फ्री लवो। 31 मेलनी मेलनी ते स्टील ते इंडिया रियान वास्ते वधिया सूट केस खरीदना चाहुंदे हो ता आओ सीके लिक्विडेशन। नंबर टू कॉल 9054055555। सीके लिक्विडेशन।
3: रिट्स फर्नीचर दा ए मैसेज जरा ध्यान नाल सुनो। सस्ता

0: Jabra News Network Toronto.
1: ਸਵਰਗੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਲਾ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਪੇਕਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਾਵਿਆ ਹੁਮਕਿਰ ਤੋਂ ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਸੇ ਡਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਏਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਡਰੀ ਹੈ, ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਵਿਆ ਹੁਮਕਿਰ ਤੋਂ ਮੀਤਾ ਓਜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਆਈ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਵਿਆ ਹੁਮਕਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੀਤਾ ਓਜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਥੇ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਵਿਆ ਹੁਮਕਿਰ ਤੋਂ ਮੀਤਾ ਓਜਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੀਤਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ।
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਤਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ।
1: ਕੈਸੇ ਹੋ?
2: ਬੜੀਆ ਜੀ,
1: ਚੜ੍ਹਦੀ
2: ਕਲਾ।
1: ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ?
2: ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਏਰੀਆਟਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ
1: ਜੀ।
2: एलोपेशिया एरियाटा इस तरह की कंडीशन है जिसमें आपके बालों में पैचेस, बॉल्ड पैचेस बन जाते हैं आपकी बॉडी पे। मेनली ज्यादातर टाइम ये हम देखते हैं कि सिर के अंदर, बियर्ड के अंदर, मुस्टेच एरिया में ये पैचेस बनते हैं। अब ज्यादातर टाइम ऐसे भी होता है कि मरीज को खुद को पता नहीं चला, वो जब अपने सलून में जाते हैं या हेयर कट करवाते हैं तो उसी तरह उनको बताया जाता है कि आपके बालों में इस तरह पैचेस बन गए हैं। फिर उनको होता है कि क्या मुझे कोई कीड़ा लग गया, कोई डेफिशिएंसी हो गई कि ये मेरे बॉडी पे या सिर पे इस तरह पैचेस बनने स्टार्ट हो गए हैं। अब काफी बार क्या होता है कि पहले शुरुआत होगी एक छोटे से पैच के साथ और उसमें से फिर छोटे में से बड़ा पैच बनेगा, कुछ एक दो चार पैचेस डेवलप होने लगते हैं। समटाइम्स कुछ एक रेयर केसेस में ऐसे होता है कि पूरी बॉडी से बाल झड़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली हेयर फोलिकल पे अटैक कर देता है, जिस करके क्या होगा कि ये हेयर फोलिकल्स श्रिंक हो जाते हैं तो उसमें से नया बाल जो है वो बाहर नहीं आ पाता और जो ऑलरेडी वहां पे था वो झड़ने लगा। सो उतने पर्टिकुलर पैच में जहां पे इम्यून सिस्टम ने अटैक किया है ये पैच बन जाता है। सो पूरे सिर को अफेक्ट नहीं करेगा, बाकी के बाल आपके सही रहेंगे, सिर्फ ये बॉल्ड स्पॉट आप देखोगे कि स्टार्टिंग में छोटा सा था उसमें से लूनी टूनी की साइज का बड़ा हो गया। कई बार क्या होगा कि उसमें बाल वापस आ जाते हैं एक पैच में तो दूसरे पैचेस बनने लगते हैं साथ ही साथ, या थोड़े टाइम बाद वही पैच में से बाल चले गए, या फिर जो नया हेयर ग्रोथ हुआ वो व्हाइट कलर के हेयर आ रहे हैं, बाकी का सारा एरिया ब्लैक हेयर है लेकिन इसमें फिर आपके व्हाइट हेयर आने लगेंगे। सो ये लाइकन प्लेनस जैसी ऑटो इम्यून कंडीशन है उसके साथ भी ये कंडीशन पाई जाती है। और ज्यादातर टाइम क्या होता है कि आपको भी पता नहीं चलता है कि क्या खा लिया कर लिया और इम्यून सिस्टम ने ये रिएक्शन दे दिया। तो एक बार ये कंडीशन डेवलप हो गई फिर जैसे ही आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट वगैरह को दिखाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं तो क्या होगा कि वो स्टीरोइड के इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे एक बार वहां पे आ जाएंगे लेकिन थोड़े टाइम बाद और पैचेस बनना भी स्टार्ट हो जाता है। सो ये कब तक हम करते रहे, जो पेशेंट्स आते हैं उनको यही कंसर्न होता है। तो ऐसे में चाहे आपको कोई भी कंडीशन है कि लाइकन प्लेनस करके आपके सिर से बाल जड़ रहे हैं या एलोपेशिया एरियाटा, सिंपली ये प्रॉब्लम है। गुड थिंग इज कि ये हेयर फोलिकल श्रिंक हो गए हैं लेकिन डेड नहीं हुए हैं। तो ऐसे में कुछ एक मंथ का ट्रीटमेंट, खाने की मेडिकेशन, साथ में लगाने वाली मेडिकेशन जो हम देते हैं उससे हेयर फोलिकल स्टिमुलेट होके नया हेयर ग्रोथ जो है वो होने लगेगा। एंड कुछ ही मंथ्स में आप देखेंगे कि उसमें बेबी हेयर दिख रहे हैं और धीरे धीरे करके आपके ये पैचेस जो है कुछ एक मंथ्स में भरने लगेंगे। सो वैसे भी आप देखो कि कनाडा में हेयर फॉल की प्रॉब्लम काफी लोगों को है, जब से यहाँ पे आए हैं ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, यहाँ का हवा पानी एंड फॉल इज द सीजन के आप कहते हो ना कि जैसे पत्ते झड़ते हैं तो उसी तरह बाल झड़ने के लिए ये सीजन माना जाता है और जनरलाइज्ड भी हार्मोनल इश्यू करके बालों में थिनिंग हो गई है स्कॉल्प पे आपके कि स्कॉल्प विजिबल हो रहा है, बहुत ही थिन रह गए हैं बाल आपके या बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ हुआ है या फिर सिबोरिक डर्मेटाइटिस है। सो किसी भी तरह के नवी पुरानी बीमारी वास्ते काव्या होम्योकेयर से आप मेरा कांटेक्ट जरूर करें। मंडे टू सैटरडे वी आर ओपन 6 days a week सवेरे 10 लेके शाम 6 बजे तक। कुछ एक इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो होम्योपैथी का कवरेज प्रोवाइड करती हैं तो उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो लोकेशन है हमारी 10 Cottrell Boulevard यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन एंड नंबर टू कॉल इज 6477976477779.
1: बहुत शुक्रिया मीता जी, थैंक यू वेरी मच।
2: थैंक यू सो मच चाला जी।
1: ये सन गोल्ड मेडलिस्ट काव्या होमके तो मीता ओजा जी, सलाह मशरा तुसी ले सकते हो, नंबर एनी टाइम तुसी साडे को ले सकते हो 6477760279। तुसी देख रहे हो टेलीविजन IPTV बॉक्स ते यूट्यूब फेसबुक ते सारी गलबात तुसी सुनी है। लोकल नंबर 641-741-1919 अमेरिका दे विच, कैनेडा दे विच आल ओवर 647-910-1320 भी ते तुसी सानू सुन दे हो। रंगला पंजाब दे ऐप ते CJMR 1320 AM दे ऐप ते भी सुनिया ते देखिया जा सकता है। लाओ सरकार डर गई आर्टिकल तरना साझा करदे आं, उस तो बाद किदा साहब भी हाजिर होणगे। एक होर रिपोर्ट बड़ी जबरदस्त ते कुछ खबरां गल्लां बातां चलदियां रहणगियां। टूडे इज फ्राइडे नो इंग्लिश विदन 1 मिनट भी प्ले करांगे जिसनों पीजा मशीन वालों स्पॉन्सर किया जाएगा। जेड़ा कंटिन्यू लगातार बिना रोके गल्लां बातां करेगा उसनों सरप्राइज कैश अमाउंट भी दिती जाएगी CJMR 1320 AM दी मैनेजमेंट वालों। सो नो इंग्लिश विदन 1 मिनट जदों असीं अनाउंस करांगे उदों तुसीं करनी है गल, हिंदी च कर सकदे हो, पंजाबी च कर सकदे हो, जिथों मर्जी कर सकदे हो। कैश अमाउंट जितने वास्ते तुसीं वर्ल्ड वाइड जिथों मर्जी कॉल कर सकदे हो। शर्त यह है रुकना नहीं है, 5 to 7 seconds भी तुसीं रोक गए तुसीं डिसक्वालीफाइड हो। ऊ हां हां जी नहीं करना, लगातार गल्लां बातां करनियां ने, धार धार धार धार पंजाबी च कर लो, हिंदी च कर दो, उर्दू च कर लो, पर इंग्लिश नहीं बोलनी। बहुत जल्दी खेडांगे एंजू जी प्ले करनगे तुहाडे नाल नो इंग्लिश विद एनवायरमेंट। सरकार डर गई स्पॉन्सर करनगे पिज्जा मशीन, अज बाकमाल डील आई है, मैनू तो बड़ी अच्छी लगी है। यह चोपड़ियां नाल दो हो जाणियां ने, बच्चे किसी वेले पोटैटो वेज लाइक करदे नूं तुहानू वखरा आर्डर करना पैंदा। ते मैं पुछिया सी कने दा, कहिंदे $6-7 दा पाउंड हुंदा। मैं कहा फिर तां लुट्टण वाली गल ही है, लुट्ट लो जे लुट्टिया जांदा। 2 large pizzas 4 toppings each, 1 to 4, 2 to 4 कंबाइन नहीं होणगियां, $24.99। जे तुसी 2 dipping sauce लैणी है तो डिपिंग सॉस

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबी को वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165
1: वाह गिल साहब ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी उपरो एनी सारी एनर्जी ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है
2: ओ यार काव्य होमो केयर होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ
3: जेकर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो बीमारी पावे कोई भी होवे कॉल करो
4: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड यूनिट 104 ब्रैम्पटन
5: कैलेडन सब्जी फार्म जिथो तुसी खरीद सकते हो इना दे खुद दे खेतां विच उगाईयां जांदियां सब्जियां हरियां मिर्चा घिया मटर कद्दू लौकी शलगम टमाटर शिमला मिर्चा अते वन सवनियां सब्जियां दा राजा सरों दा साग गंदला वाला बनाया बनाया लेना विद मक्की दी रोटी जां तुसी खुद अपने घर दे विच लिया के बना सकते हो इस तो अलावा स्टील सरवलो पित्तल तांबा मिट्टी हर साइज दे बर्तन फोल्डिंग बैड नवारी पलंग मूड़े साइकिल तंदूर आदि खरीदने वास्ते पहुंचो 1250 एयरपोर्ट रोड इन कैलेडन एयरपोर्ट एंड मेफील और कॉल 9058409000 ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग ली आओ कैलेडन सब्जी फार्म
6: नवरात्रि स्पेशल अनोखा अंदाज दी स्पेशल सेल लगन जा रही है लेडीज मेंस पार्टी वेयर ब्राइडल लहंगास सूट्स साड़ीज कुर्तीज अनस्टिच्ड सूट मटेरियल लेना होवे ते आज ही आओ सूट्स ते ड्रेसेस कस्टमाइज भी करवा सकदे हो नवरात्रि स्पेशल घाघरा चोली जस्ट $50 More than 20 years of experience. Mention CJMR and get 20% off on every dress. Anokha Andaz, 6101 Mayfield Road, Unit 3, Brampton. Call 905-794-4005.

0: नवंबर 5 से 8 तक बनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: सी के लिक्विडेशन ते चल रही है भारी सेल। 50 डॉलर वाला कंबल 100 दे 3 ले सकदे हो। 16 पीस डिनर सेट 70 वाला 35 दा। गुरबानी रेडियो 100 दे 5। कंफर्ट सेट 20 डॉलर दा। परफ्यूम 20 डॉलर दे 3 परफ्यूम गिफ्ट सेट मिलेगा 40 डॉलर दा। पैनासोनिक दा माइक्रोवेव 79 डॉलर दा। ब्रांडेड जैकेट 15 नाल दियां बच्चों दे टॉय 50% ऑफ। ट्राईसाइकल मिलेगा सिर्फ 40 डॉलर दा। 7 पीस ग्लास विद विस्की बोतल सेट 20 डॉलर दा। 150 डॉलर दी शॉपिंग करो ते इस सेट बिल्कुल फ्री लवो। 31 मेलनी मेलनी ते स्टील ते इंडिया हरियाणा वास्ते वधिया सूट केस खरीदना चाहुंदे हो ता आओ सीके लिक्विडेशन। नंबर टू कॉल 9054055555। सीके लिक्विडेशन।
2: वाह भाभी जी मुबारकां, तुहाडा घर ते बहुत शानदार है। कारपेट्स वुडन सब कमाल दे ने, लगदा है काफी खर्चा कीता है।
3: ए कमाल है जी, जीटीए फ्लोरिंग दा अफोर्डेबल प्राइस ते क्वालिटी दा सामान। वड्डे शोरूम ते आओ, हार्डवुड कारपेट लेमिनेट टाइल्स दी खूबसूरत लार्ज वैरायटी पाओ। कॉल करो नव बरार नू 905-605-6805 905-605-6605।
4: जीटीए फ्लोरिंग कनाडा।
5: जीटीए फ्लोरिंग कनाडा।
6: विश्वास प्रतीक ना रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच। रवि गुलाटी लॉ ऑफिस लीगल सेवा वादा काम हो गया जे सौखा। मारो एक आवाज अजेहे कमा वास्ते। रियल एस्टेट क्लोजिंग नोटराइजेशन एफिडेविट्स डेक्लेरेशन जा स्पॉन्सरशिप लेटर्स पावर ऑफ attorneys bachalai consent letters barrister solicitor notary public ravinder pal singh gulati 905-232-8700 905-232-8700 appointment waste log in karo notaryhelp.ca ravi gulati law office theek sala ballai ballai
7: इस हॉलिडे सीजन अपनी हर पार्टी के लिए लव साथ को अपना साथी बनाओ।